0: को धार्मिक पर्यटन प्रबन्धन का निम्ति शनि जयन्ती पर्व को अवसर पारी शनिधाम सगौरव प्रस्तुत गर्दछ।
1: 11 शनि जयन्ती उत्सव विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम रमाइलो मेला साथमा नगर स्तरीय भजन र दुनाटपरी बनाउने प्रतियोगिता।

0: समय सूचक का साथ
1: दक्षिण कोरियामा पढाई र रोजगारी को उत्कृष्ट परामर्श केन्द्र गोल्डन इमिनेंट इंटरनेशनल प्राली भरतपुर चितवन सीएमसी हॉस्पिटल को ठीक अगाड़ी संपर्क 0556 5563 98 550 77 061 र 98 550 77 053
2: 24 घंटा इमर्जेन्सी सेवा विशेषज्ञ चिकित्सक बाट मेडिकल चेकअप डायग्नोसिस ल्याब र सबै रोग व्याधि को उत्कृष्ट उपचार सेवा रहेको पुष्पाञ्जलि हॉस्पिटल प्राली बाल मंदिर रोड भरतपुर 10 चितवन फोन 0556 4940 4493 580 र 98 550 26 440
3: It's 2 o'clock. अहिले 2 बजेको छ।